लखनऊ के एक माने हुए बैरिस्टर थे और अपने पैतृक नगर बाराबंकी में एक आलीशान कोठी स्वयं अपनी निगरानी में बनवा रहे थे। सैयद साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए अपनी कोठी का जो भाग उन्होंने सबसे पहले बनवाया वह उनकी लाइब्रेरी का हाल तथा रीडिंग रूम था, जिसमें वह प्रातःकाल आकर बैठ जाते। वह बारह बरामदे में कुर्सी डालकर समाचार पत्र पढ़ते और ईंटें ढोने वालों की निगरानी भी करते। उन्हीं दिनों मुझे समाचार पत्र पढ़ने का चस्का पड़ा। होता अधिकतर यूं था कि इधर मैंने उठती हुई दीवार के नीचे ईंटें फेंकी, उधर भागता हुआ रीडिंग रूम की ओर चला गया। बैरिस्टर साहब समाचार पत्र पढ़ने में इतने लीन होते कि उन्हें मेरे आने की खबर तक न होती और मैं उनके पीछे खड़ा होकर समाचार पत्र का अध्ययन शुरू कर देता। बढ़ते बढ़ते ये शौक यहाँ तक बढ़ा कि बहुधा मैं बैरिस्टर साहब से पहले ही समाचार पत्र पढ़ने पहुंच जाता। बल्कि प्रायः ऐसा भी हुआ कि समाचार पत्र का पहला पन्ना मैं पढ़ रहा हूँ और वह सिनेमा के विज्ञापनों वाले पन्ने मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं ना जाइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंद्र। मैं कह रहा हूँ ओ। ईडन, आइजनहावर, बुलगानीन फिर मुलाकात करेंगे और वह कह रहे हैं आहा, हजरतगंज में दिलीप कुमार और निम्मी की नई फिल्म आ रही है। मैं कह रहा हूँ चच। सिकंदरिया की हवाई दुर्घटना में 12 मुसाफिर मर गए और वह कह रहे हैं बाप रे बाप, सोने का भाव फिर बढ़ गया है। बस इसी प्रकार हमारा यह सिलसिला चलता रहता, यहाँ तक कि मेरा मालिक ईटे गिनकर और मिस्त्री के हवाले करके वापस आ जाता और मेरी पीठ पर जोर से एक कोड़ा मारकर मुझे ईंटे धोने के लिए ले जाता, लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे कुछ न कहते। दूसरे फेरे में जब मैं वापस आता तो वह स्वयं समाचार पत्र का अगला पन्ना उठाकर मुझे दे देते और यदि मैं

पूरा पढ़ चुका होता तो भीतर लाइब्रेरी से कोई पुस्तक निकाल लाते और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते। यह जो मैं पढ़ना और बोलना सीख गया हूँ तो इसे सैयद साहब का ही चमत्कार समझिए या उनकी कृपा दृष्टि, क्योंकि सैयद साहब को समाचार पत्र पढ़ते हुए खबरों पर बहस करने और पुस्तकों को ऊंचे स्वर में पढ़ने तथा पढ़ते हुए उन पर टिप्पणी करने की बुरी आदत थी। यहाँ जिन स्थान पर वह कोठी बनवा रहे थे उन्हें कोई व्यक्ति ऐसा न मिला जिससे वह ऐसी बहस कर सके। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त था, बस मैं एक गधा उन्हें मिला। परंतु इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, वास्तव में वह केवल बातचीत करना चाहते थे, किसी से अपने मन की बातें कहना चाहते थे। गधे की बजाय एक खरगोश भी उनकी संगति में रहता तो महापंडित बन जाता। सैयद साहब मेरे प्रति बड़ा स्नेह प्रकट करते थे और प्रायः कहा करते थे, अफसोस तुम गधे हो, अगर आदमी के बच्चे होते तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता। सैयद साहब की कोई संतान न थी। खैर, करनी भगवान की यह हुई कि एक दिन सैयद करामत अली शाह की कोठी तैयार हो गई और मेरे मालिक को और मुझे भी वहाँ के काम से छुट्टी मिल गई। फिर उसी रात धब्बू कुम्हार ने ताड़ी पीकर मुझे डंडे से खूब पीटा और घर के बाहर निकाल दिया और खाने के लिए घास भी न दी। मेरा दोष यह बताया कि मैं ईंटे कम ढोता था और समाचार पत्र अधिक पढ़ता था, और कहा मुझे ईंटे धोने वाला गधा चाहिए, समाचार पत्र पढ़ने वाला गधा नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंदर। कहीं मत जाइएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। रात भर भूखा प्यासा

मैं धब्बू कुम्हार के घर के बाहर शीत में ठुठुरता रहा। मैंने निश्चय कर लिया कि एक दिन निकलते ही सैयद करामत अली साहब की कोठी पर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ईंटें धोने पर नहीं तो पुस्तकें ढोने पर ही मुझे नौकर रख लीजिए। शेक्सपियर से लेकर बेढम मूजी तक मैंने प्रत्येक लेखक की पुस्तकें पढ़ी है और जो कुछ मैंने उन लेखकों के संबंध में जानता हूँ वह कोई दूसरा गधा नहीं जान सकता। मुझे पूरी आशा थी कि सैयद साहब तुरंत मुझे रख लेंगे, लेकिन भाग्य की बात देखिए कि जब मैं सैयद साहब की कोठी पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि रातों रात कोठी पर फसादियों ने हमला कर दिया। सैयद करामत अली साहब को अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भागना पड़ा। फसादियों में लाहौर के गंडासी फल विक्रेता भी थे, जिनके लाहौरी दरवाजे के बाहर फलों की बहुत बड़ी दुकान और मॉडल टाउन में एक आलीशान कोठी थी। इस हिसाब से एक आलीशान कोठी उन्हें यहाँ भी मिलनी चाहिए थी। सौ भगवान की कृपा से उन्हें सैयद करामत अली साह की नई बनाई कोठी मिल गई। जब मैं वहां पहुंचा तो गंडासी लाइब्रेरी की समस्त पुस्तकें एक एक करके बाहर फेंक रहे थे और लाइब्रेरी को फलों से भर रहे थे। ये शेक्सपियर का सेट गया और तरबूजों का टोकरा भीतर आया, ये गालिब के दीवान बाहर फेंके गए और मलिहाबाद के आम भीतर रखे गए, ये खलील जिब्रान गए और खरबूजे आए। थोड़े समय के बाद सब पुस्तकें बाहर थी और सब फल भीतर। अफलातून के स्थान पर आलू बुखारे, सुकरात के स्थान पर सीताफल, जोस के स्थान पर जामुन, मोमिन के स्थान पर मौसम्बी, सैली के स्थान पर सहतूत, किट्स के स्थान पर ककड़िया, सुकरात के स्थान पर बादाम, कृष्णचंद्र के स्थान पर केले और लहमत के स्थान पर लीमू भरे हुए थे। पुस्तकों की यह दुर्गत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उन्हें एक एक करके उठाकर अपनी पीठ पर लादने लगा। इतने में गंडासी अपनी फलों की लाइब्रेरी से बाहर निकल आए और एक नौकर से कहने लगे, इस गधे की पीठ पर सारी पुस्तकें लाद दो और एक फेरे में ना जाए तो 8-10 फेरे करके ये सब पुस्तकें एक लारी में भरकर लखनऊ ले आओ और नखास में बेच डालो। अतएव गंडासी के नौकर ने ऐसा ही किया। मैं दिन भर पुस्तकें लाद लाद कर लारी तक पहुंचाता रहा और जब शाम हो गई तो अंतिम पुस्तक की लारी भी पहुंच गई। तब कहीं गंडासी के नौकर ने मुझे छोड़ा, मेरी पीठ पर उसने जोर का एक कोड़ा जमाया और मुझे लात मार कर वहां से भगा दिया। मैंने सोचा जिस शहर में पुस्तकों तथा महापंडितों का ऐसा अनादर होता हो वहां रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने वहां से प्रस्थान का संकल्प लिया। अपने शहर के दरो दीवार पर हसरत भरी निगाह डाली, घास के 2-4 तिनके तोड़कर मुंह में रखे और दिल्ली की ओर चल खड़ा हुआ। सोचा दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी भी है और कला विद्या राज्यों का राजनीति का केंद्र भी, वहां किसी न किसी प्रकार गुजारा हो जाएगा। आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। कहीं मत जाइएगा, यही जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर विद आरजे अंजलि।

हेलो हाय नमस्कार वेलकम अगेन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने। उन दिनों दिल्ली चलो का नारा प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति की जुबान पर था और एक तरह से मैं भी इस नारे से प्रभावित होकर दिल्ली जा रहा था, परंतु यह मालूम न था कि रास्ते में क्या विपत्ति आएगी। रास्ते में एक स्थान पर मैंने देखा एक ढही सरहे दाढ़ी रखे हुए एक छोटी सी गठरी बगल में दबाए एक छोटे से गांव से भागकर सड़क पर आ रहा था। मैंने सहानुभूति प्रकट करते हुए उसे अपनी पीठ पर सवार कर लिया और तेज तेज कदमों से चलने लगा ताकि उस गांव के फसादी उसका पीछा न कर सके। और हुआ भी यही, मैं बहुत आगे निकल गया और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे कारण एक निर्दोष की जान बच गई। इतने में क्या देखता हूँ कि बहुत से फसादी रास्ता रोके खड़े थे। एक फसादी ने हमारी ओर देखकर कहा, देखो इस बदमाश को, न जाने किस बिचारे का गधा चुराए ले जा रहा है। रई ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा मगर किसी ने एक न सुनी। उसे फसादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मुझे एक फसादी ने बांध लिया और अपने घर की ओर चला। जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में कुछ गांव पड़ते थे। यहाँ पर कुछ एक दूसरी ओर से फसादी आगे बढ़े। उस बिचारे ने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा लेकिन किसी ने एक न सुनी और उसका सफाया हो गया और मैं एक मौलवी साहब के हिस्से में आया। रास्ते में मैंने मौलवी साहब के आगे बहुत अनुयाय विनय की, मैं हजरत मुझे छोड़ दीजिए। मौलवी, यह कैसे हो सकता है, तुम माले गनीमत हो। मैं, हुजूर मैं माले गनीमत नहीं हूँ, गनीमत यह है कि मैं एक गधा हूँ, वरना अब तक मारा गया होता। मौलवी ने कहा, अच्छा यह बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान, फिर हम फैसला करेंगे। मैं ठीक ठीक तो कह रहा हूँ, न मैं मुसलमान हूँ न मैं हिंदू हूँ, मैं तो गधा हूँ। मौलवी ने कहा, तू बहुत बदमाश मालूम होता है, हम घर जाकर तुझे ठीक करेंगे। मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद के बाहर एक खूंटे से बांध दिया और स्वयं भीतर चले गए। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद के बाहर एक खूंटे से बांध दिया और स्वयं भीतर चले गए। मैंने मौका गनीमत जाना और रस्सी तोड़कर वहां से निकल भागा। ऐसा भागा कि मीलों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैंने यह निश्चय कर लिया था, इन संकीर्ण हृदय व्यक्तियों के झगड़े से एक गधे का क्या संबंध। अब मैं किसी की भी सहायता नहीं करूंगा, अतएव अब मैं दिन भर किसी वृक्ष की घनी छाया में पड़ा रहता या किसी जंगल अथवा मैदान में घास चरता रहता और रात होने पर अपनी यात्रा शुरू कर देता। इसी प्रकार चलते चलते बड़ी मुश्किल से कहीं 6-7 महीनों के बाद दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के भूगोल का वर्णन संक्षिप्त रूप से करता हूँ ताकि दिल्ली आने वाले यात्री मेरी जानकारी से पर्याप्त लाभ उठा सके और धोखा न खाए। इसके पूर्व में शरणार्थी, पश्चिम में शरणार्थी, दक्षिण में शरणार्थी और उत्तर में शरणार्थी बसते हैं। बीच में भारत की राजधानी है और इसमें स्थान स्थान पर सिनेमा के विभिन्न औषधियों और शक्तिवर्धक गोलियों के विज्ञापन लगे हुए हैं, जिससे यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति की महानता का अनुभव होता है। एक बार मैं चांदनी चौक से गुजर रहा था कि मैंने एक सुंदर युवती को देखा जो तांगे में बैठी पायदान पर पांव रखे अपनी सुंदरता के नशे में डूबी चली जा रही थी और पायदान पर विज्ञापन चिपका हुआ था। मैं इस दृश्य के तीखे व्यंग से प्रभावित हुए बिना न रह सका और बीच चांदनी चौक में खड़ा होकर काकाहा लगाने लगा। लोग राह चलते चलते रुक गए और एक गधे को बीच सड़क में काकाहा लगाते देखकर हंसने लगे। वे बेचारे मेरी दुष्ट आवाज पर हंस रहे थे और मैं उनकी दुष्ट सभ्यता पर कहकहे लगा रहा था। इतने में एक पुलिस के संतरे ने मुझे डंडा मारकर टाउन हॉल की ओर धकेल दिया। इन लोगों को मालूम नहीं कि कभी कभी गधे भी इंसानों पर हंस सकते हैं। दिल्ली में आने वालों को यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली में प्रवेश करने से

बहुत से दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, तुर्कमान दरवाजा इत्यादि, परंतु आप दिल्ली में इनमें से किसी दरवाजे के रास्ते भीतर नहीं आ सकते, क्योंकि इस दरवाजों के भीतर प्रायः गाय, भैंसे, बैल बैठे रहते हैं या फिर पुलिस वाले चारपाइयां बिछाई ऊँगते रहते हैं। हाँ, इन दरवाजों के दाएं बाएं बहुत सी सड़कें बनी हुई है जिन पर चलकर आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। अंग्रेजों ने दिल्ली में भी एक इंडिया गेट बनाया है, लेकिन इस गेट से भी गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। दरवाजे के इर्द गिर्द घूम फिर कर जाना पड़ता है। संभव है दिल्ली के घरों में भी थोड़े दिनों में ऐसे दरवाजे लग जाए, फिर लोग खिड़कियों से कूद कर घरों में प्रवेश किया करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ, आरजे अंजलि के साथ।

दिल्ली में नई दिल्ली है और नई दिल्ली में कन्नॉट प्लेस है। कन्नॉट प्लेस बड़ी सुंदर जगह है। शाम के समय मैंने देखा कि लोग लोहे के गधों पर सवार होकर इसकी गोल सड़कों पर घूम रहे हैं। यह लोहे का गधा हमसे

तेज भाग सकता है परंतु हमारी तरह आवाज नहीं निकाल सकता। यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को भेड़ की खाल के बालों के कपड़े पहनते हुए देखा है। स्त्री अपने मुंह और नाखून रंगती है और अपने बालों को इस प्रकार ऊंचा करके बांधती है कि दूर से वो बिल्कुल गधे के कान मालूम होते हैं। अर्थात इन लोगों को गधे बनने का कितना शौक है यह आज मालूम हुआ। कन्नौट प्लेस से टहलता हुआ मैं इंडिया गेट चला गया। यही चारों ओर बड़ी सुंदर घास बिछी थी और उसकी धूप तो अत्यंत स्वादिष्ट थी। मैं 2-3 दिन से तो भूखा था ही, बड़े मजे से मुंह मार मार कर चलने लगा। इतने में एक जोर का डंडा मेरी पीठ पर पड़ा। मैंने घबरा कर देखा, एक पुलिस का सिपाही क्रोध भरे स्वर में कह रहा था, यह कमबख्त गधा यहाँ कैसे घुसा। मैंने पलट कर कहा, क्यों भाई, क्या गधों को नई दिल्ली में आने की मनाही है? मुझे बोलता देख कर वह सटपटा गया। शायद उसने आज तक किसी गधे को बोलते नहीं सुना था। फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसका आश्चर्य कुछ कम हुआ तो मुझे रस्सी से खींचकर थाने ले गया। थाने में ले जाकर उसने मुझे कांस्टेबल के सामने खड़ा कर दिया। हेड कांस्टेबल ने बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, इसे यहाँ क्यों लाए हो रामसी? रामसी ने कहा, हुजूर यह एक गधा है। गधा तो है, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? हुजूर यह इंडिया गेट पर घास चर रहा था। अरे घास चर रहा था तो क्या हुआ, तुम्हारी बुद्धि तो कहीं घास चरने नहीं चली गई? इसे यहाँ क्यों लाए हो? ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर देते, इस बेजबान जानवर को थाने में लाने की क्या जरूरत थी? राम सिंह ने रुकते रुकते मेरी और विजय दृष्टि से देखकर कहा, हुजूर यह बेजबान नहीं है, यह बोलता है। अब की हेड कांस्टेबल बहुत हैरान हुआ, लेकिन पहले तो उसे विश्वास न आया, फिर बोला, रामसी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं नहीं यह बिल्कुल ठीक कहता है हेड कांस्टेबल साहेब, मैंने धीरे से सिर हिलाकर कहा। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आज अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

हेड कांस्टेबल अपनी सीट से उछला, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वास्तव में उसका आश्चर्य अनुचित भी नहीं था, क्योंकि नई दिल्ली में ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो इंसान होकर गधों की तरह बातें करते हो, लेकिन एक ऐसा गधा जो गधा होकर इंसानों की तरह बातें करे, हेड कांस्टेबल ने आज तक देखा या सुना नहीं था। इसलिए बेचारा चकरा गया। उसके समझ में न आया कि क्या करे। आखिर सोच सोच कर उसने रोजनामचा खोला और रपट दर्ज करने लगा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम? गधा। बाप का नाम? गधा। दादा का नाम? गधा। यह क्या बकवास है, हेड कांस्टेबल ने क्रोध पूर्वक कहा। सबका एक ही नाम है, यह कैसे हो सकता है? अब मुझे देखो, मेरा नाम ज्योति सिंह है, मेरे बाप का नाम प्यारे लाल था, मेरे दादा का नाम जीवनदास था। हमारे यहाँ नाम बदलते रहते हैं। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो, ज्योति से मुझे संदेह की नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, सच कहता हूँ कि हमारे यहाँ नाम नहीं बदलते। जो बाप का नाम होता है वही बेटे का और वही पोते का। इससे क्या लाभ, ज्योति सिंह ने पूछा। इससे वंशावली मिलाने में सुविधा होती है। उदाहरण स्वरूप, क्या आप मुझे अपने परदादा के परदादा का नाम बता सकते हैं? मैंने ज्योति सिंह से पूछा। नहीं, ज्योति सिंह ने अफसोस प्रकट किया, मगर मैं बता सकता हूँ। आपके यहाँ वह आदमी बड़ा खानदानी समझा जाता है जो आज के 400, 600, 800, 1600 साल पहले अपने पुरखे का नाम बता सके। देखिए, मैं आपको आज से 16 लाख साल पहले के अपने पुरखे का नाम बता सकता हूँ, श्री गधा। बोलिए, फिर क्या हम गधे आपसे बेहतर खानदान के हुए या नहीं? ज्योति सिंह ने बड़े ध्यान से मेरी ओर देखा, उसका संदेह और बढ़ गया। उसे धीमे स्वर में रामसी के कान में कानाफूसी करते हुए कहा, मुझे यह शख्स बड़ा खतरनाक मालूम होता है। हो ना हो, यह कोई विदेशी जासूस है जो गधे के लिबास में नई दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। रामसी ने कहा, हुजूर मैं तो समझता हूँ इसकी खाल उतरवा कर देखना चाहिए, भीतर से खुफिया जासूस निकल आएगा, फिर हम इसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। ज्योति सिंह ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन इसके लिए सब इंस्पेक्टर चानन राम की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है, चलो इसे उनके सामने ले चले। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा, जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। कहीं जाइएगा नहीं, यहीं जुड़े रहिए मेरे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: मेरे कान में भी कुछ भनक पड़ गई थी, लेकिन मैं कान लपेटे चुप रहा और उन दोनों के साथ भीतर के कमरे में सब इंस्पेक्टर चाननराम के सामने चला। चाननराम की मूछें बिच्छू के डंक की तरह खड़ी थी और उसका सुर्ख चेहरा हर समय तमतमाया रहता था। चाननराम को आज तक किसी ने हंसते या मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, इसलिए लोग उसे एक योग्य पुलिस अफसर समझते थे। चाननराम ने उसकी पूरी बात सुनकर मेरी ओर घूर कर देखा और कहा, तो तुम पाकिस्तानी के जासूस हो। मैं चुप रहा। चाननराम ने जोर से मेज में मुक्का मारकर कहा,
1: समझ गया, तुम रूस के एजेंट हो।
0: मैं फिर चुप रहा। चाननराम ने दांत पीसते हुए कहा,
1: कमबख्त, बदमाश, कम्युनिस्ट, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, वरना जल्दी बताओ तुम कौन हो।
0: यह कहकर चाननराम मुझे मुक्को लातों और ठोकरों से मारने लगा। मारते मारते जब वह बिल्कुल बेदम हो गया तो मैंने जोर से एक दर्द भरी

0: आवाज की। आवाज करते ही वह रुक गया और पहले मेरी ओर आश्चर्य से देखकर और फिर अत्यंत क्रोध से ज्योति सी और राम सी की ओर देखकर बोला, अरे यह तो बिल्कुल गधा है और तुम कहते हो यह कोई विदेशी जासूस है। तुम मुझसे मजाक करते हो, मैं अभी तुमको डिसमिस करता हूँ। राम सी और ज्योति सी दोनों भय से थर थर कांपने लगे, हाथ जोड़कर बोली, हुजूर अभी यह बाहर के कमरे में बोल रहा था, साफ साफ बोल रहा था, बिल्कुल इंसानों की तरह।
1: तुमने सपना देखा होगा या काम करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। जाओ इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ और कांजी हाउस में बंद कर दो। अगर 3-4 दिन में इसका मालिक न आए तो नीलाम कर देना।
0: मैं खुशी खुशी बाहर आया, मेरी चाल काम कर गई। अगर मैं भूलता तो वे लोग निश्चय ही मेरी खाल उधेड़ कर देखते कि भीतर कौन है। इसके बाद 3-4 दिन तो क्या, एक हफ्ते तक कोई मालिक न आया, फिर मुझे नीलाम कर दिया। अब के मुझे रामू धोबी ने खरीद लिया जो यमुना पार कृष्णनगर में रहता था। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर गधे की आत्मकथा, जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तो जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
0: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
2: श्रोताओ, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओ, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्या

0: कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
1: जी
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
1: जी हाँ श्रोताओ, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओ, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: जी
0: यही वो अनोखी जगह है जहाँ विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
1: जी
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
1: जी
0: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओ, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही

0: जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी, बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो। आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ। जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई क्या करूं, क्या करूं भाई क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी

0: हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओहो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो

0: तुम खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काट।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
8: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
6: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
7: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
6: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
4: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
9: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
6: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
4: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के लिए ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

बक्का पालनपुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे, मस्त रहे, सांभळतू रहे, ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

हेलो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज पे मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे दिलबर लेके आया हूँ वापस सांसों की रूहानियत दिल की धड़कन दिल की आवाज 2.0। दोस्तों जब भी हम प्यार इश्क मोहब्बत उसके बारे में सोचते हैं या फिर ये जब हमें होता है तब हम अपने आप से कोई सवाल नहीं पूछते पर हम कुछ चीजें अपने जहन में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिठा लेते हैं। यानी कि मैं प्यार करता हूं तो मेरा प्यार ऐसा होना चाहिए। सामने वाला जो बंदा या बंदी है जिससे आपको प्यार हो चुका है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, या फिर मैं उसके लिए ये करूंगा वो करूंगा। पर क्या जीवन में आप जब भी प्यार को महसूस करते हैं तब ये ही जरूरी है कि आप कैसे और क्या किसके साथ करें? या फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम केवल किसी इंसान के लिए प्यार या मोहब्बत जताकर अपनी जिंदगानी को इतनी सुंदर बना पाएंगे या फिर हमें भी उस प्यार में डूबने की कोई रीजन कोई कहानी या फिर कोई पोयम ढूंढनी पड़ेगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को रोमांटिक बना पाएंगे या फिर बनाते हैं कि नहीं, ये भी सोचना चाहिए। चलिए आज के शो पर हम कोई नई कहानी नहीं सुनते हैं या फिर नए किसी किस्से के बारे में बात नहीं करते, पर आज हम बात करेंगे क्या हम खुद प्यार में डूबने के बाद कुछ रूहानियत वाली बात या फिर अपनी लाइफ को रोमांटिक बनाते हैं या नहीं, या फिर कैसे बनाना चाहिए। इसी बात पर थोड़ी सी मीठी नोकझोंक के साथ हम चर्चा करेंगे, पर अभी वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आरजे दिलबर के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

प्यार हो जाता है, प्यार में कुछ बदलाव लाइफ में आते भी हैं, पर मैंने जैसे कहा थोड़ी देर पहले वैसे ही, क्या हम अपनी लाइफ को रोमांटिक बना सकते हैं या फिर बनाते हैं? क्या किसी और को ये महसूस होता है कि ये बंदा या बंदी प्यार में है? क्योंकि ये बहुत ही इश्क की मूड से अपनी लाइफ को जी रहा है। अगर इस बात पर गौर से सोचेंगे तो नहीं, यही जवाब आपके दिल से निकलकर ज्यादातर आएगा। क्योंकि सोचिए, आप अपने लाइफ में जो चीजें अगर प्यार हो जाने के बाद बदलने की जगह वो रोमांटिक तौर पर नहीं कर पा रहे, तो फिर सोचिए कि आपका प्यार कितना आप में बसा है। जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सबकी लाइफ में आप जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं या जिससे आपको कुछ पैसे मिलते हैं, उससे आपका प्यार वाला रिश्ता कैसा है, या फिर आप जब प्यार में पड़ते हैं या फिर उसके साथ आपका रोमांटिक मूड है कि नहीं। क्योंकि आप सोचिए, अगर ये काम, जॉब या फिर आपकी जो नौकरी है जहाँ से पैसे आने वाले हैं, वो चीज़ें बेरंग हो जाए या फिर वो आपको मिले ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपकी लाइफ में? क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और अगर पड़ता है तो उसका इम्पोर्टेंस कितना है ये जानना, यही प्यार की निशानी है। अगर आप प्यार में हैं या फिर आप रोमांटिक मूड में हैं, तो आप जो काम करते हैं उसमें भी आपकी रोमांटिज्म आनी चाहिए। जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं, तो अगर आप इश्क मिजाजी हैं तो उसमें इश्क होना चाहिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपका मूड रोमांटिक

ये तो आप गाड़ी कितनी इत्मीनान से चलाएंगे। अगर आप कोई कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, आपकी लाइफ या फिर आपकी नौकरी उस पे है, अगर आपका रोमांटिक मूड है या फिर रोमांटिज्म आप में है, तो आपका वो काम उसमें जो लव्स आएंगे वो सारे रोमांटिक होंगे, और वो काम आपको बड़ा सा आनंद भी देगा, और जिसके लिए कर रहे हैं यानी आपके बॉस के लिए या फिर आपकी फर्म के लिए, तो वहां से भी आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। ये सोच कर देखिए कि आपकी लाइफ की जॉब जो है उसके लिए, उसके प्रति आपका रोमांटिक मूड या भाव है या नहीं। अगर नहीं है तो बनाकर देखिए, यही तो सच्चा प्यार है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद कुछ ऐसी ही रूहानी बातें करने के लिए 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

मेरा स्वामी या मेरा सज्जन इतना खूबसूरत है कि क्या बात करूं मैं। ये अल्फाज ज्यादातर हमें सुनने को मिलते हैं किसी भी प्यार में डूबे व्यक्ति के मुंह से, पर कभी आप या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो प्यार में है, इश्क में है, या फिर ये सोचता है कि प्यार लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, तो उसे मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को भी कुछ संवारने के बाद या संवारने से पहले निहारना चाहिए। अपने आप को देखकर अपनी खूबसूरती के बारे में भी कुछ बातें करनी चाहिए, क्योंकि दिन में सुबह उठने के बाद हमारे शास्त्र और पुराण भी कहते हैं कि आप अपनी हस्तरेखाएं देखिए, फिर आप अपना चेहरा देखिए, अपने मुंह को साफ कीजिए और उसकी आंखों में झांककर नए दिन की नई रोशनी के साथ कुछ नया करने की या फिर जो काम कर रहे हैं उसमें प्यार से, इत्मीनान से सफलता प्राप्त करने की बात को छूइए। पर ये तब हो सकता है जब आप अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को प्यार करते हो। जी हाँ, बहुत सारी खामियां हो सकती है, कहीं पे तील है, कहीं पे मस्सा है, कहीं थोड़ी सी टेढ़ी नाक है, या फिर थोड़े से डार्क सर्कल भी हैं, पिंपल्स भी हैं, पर उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी जो दूसरों से आपके पास बेहतर है। कभी उसे तो अप्रिशिएशन कर लीजिए, कभी उसके बारे में सोच लीजिए और सोचिए कि ऊपर वाले ने क्या खूब और इत्मीनान से आपको वो वाली खूबी दी है। क्योंकि आप अगर प्यार में हैं तो आपका जर्रा जर्रा प्यार से महकना चाहिए। मीरा बाई या राधा, वो जैसे भी सजती थी, जैसी भी थी, वो केवल ही केवल कृष्ण और कान्हा को प्यार करती थी, ऐसा नहीं था। वो अपने आप को भी भक्तिमय या फिर प्रेम जिसमें भक्ति की हर बूंद भरी हुई थी, उस भाव से अपने आप को भी सजाया करती थी। कभी अपने आप को ही कृष्ण माना करती थी। यही चीज तो हमें भी अपनी जिंदगानी में लानी है कि हम अपने चेहरे से, अपनी बॉडी से भी कुछ अच्छी बातें सीखें और उसके बारे में अपने को यानी अपने दिल को एहसास कराएं। आइए ऐसी ही कुछ अपने जहन में, अपने दिल में प्यार वाली बातों का कैसे समय दर समय याद किया जा सकता है उस पे बात करेंगे। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, कहीं जाइएगा मत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

लोगों के मुंह से हम ये शिकायत सुनते हैं कि हमें प्यार हुआ तो हम में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया, हम में थोड़ी सी पजेसिवनेस बढ़ गई, हमें हमारी चीज़ें कोई छूता है तो पसंद नहीं आता है। वो क्या कहते हैं, प्यार के साइड इफेक्ट्स। पर मेरा हरगिज इससे थोड़ा अलग से सोचना है। अगर प्यार ही हुआ है, अगर आपको किसी से प्यार हुआ है और वो व्यक्ति भी आपसे इजहार कर चुका है, तो फिर जो प्यार होता है ना वो कभी टूटता नहीं है। लोग बोलते हैं तो फिर ब्रेकअप क्या होता है, ब्रेकअप ये होता है कि कुछ चीजों में आप जैसी सोच रहे हो वैसी ही एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, इसलिए आप अलग हो जाते हैं। पर क्या कह सकते हैं कि आपने कभी वो प्यार भुला दिया, क्योंकि आप गिनती भी अगर करते हैं तो पहला बार ये वाली बात आपके जहन में रहती ही है। और छोड़िए ये पहले प्यार वाली बात, मेरा तो ये कहना है कि आप जब प्यार करते हैं तो आपके जर्रे जर्रे से प्यार की बूंदे निकलनी चाहिए। यानी कि आपका जो लहजा है, आप किसी से बात करते हैं तो वो प्यार भरी होती है, जिससे आप प्यार कर

करते हैं उसी से नहीं, पर आपके सुबह से लेकर शाम तक अगर किसी से भी बात होती है तो आपको ये याद रखना है कि आपको अगर प्यार हुआ है तो प्यार दिखाना भी जरूरी है, प्यार बांटना भी जरूरी है। और यही चीज तो है, फिर आप देखिए अपनी आंखों से आपको सब कुछ प्यारमय दिखेगा। और यही फीलिंग्स आपके प्यार के एहसास के साथ दूसरों को भी जोड़ेगी, यानी आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। लोग बोलेंगे ये तो बहुत ही प्यार में पागल तो है, पर हमारे लिए भी उतना ही प्यार बयां भी करते हैं। और जब आपको किसी का भी साथ चाहिए तो सब जुड़ जाते हैं। वो कहती है ना राधा कि मुझे जंगल, पेड़, पौधे, बांसुरी, कृष्ण की कोई भी चीज ले लो या वृंदावन की रज को भी ले लो, इस सब में कान्हा जी का प्यार गुला हुआ मिलता है। यही तो बात है कि ऊपर वाला भी अगर किसी को प्यार करता है तो उसके सामने हार जाता है, उसका हो जाता है, ये नहीं कि उसको अपना बना ले। इसी बात पे हो चुका है वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार में वापिस आने वाला हूं, कहीं जाइएगा मत। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

0: વસ્તી ગણતરીના પ્રથમ ચરણમાં ઘર યાદી અને મકાનોની ગણતરી એટલે કે તમારા મકાનની ગણતરી થશે. ચાલો તમારી ભાગીદારીથી તેને સફળ બનાવીએ અને વિકસિત ભારત 2047 તરફ એક વધુ ડગલું ભરીએ.
1: વાપિસ મેં આપકા સ્વાગત કરતા હું. સાંસો કી રૂહાનિયત, દિલ કી ધડકન, દિલ કી આવાઝ, ટુ પોઈન્ટ ઓપા, ઓર મેં આરજે દરબાર. હમ બાત કર રહે થે કે અગર પ્યાર હમે હોતા હૈ યા ફિર હમ પ્યાર કે બારે મેં સોચતે હૈ તો હમે અપને આપ સે ભી પ્યાર કરના ચાહિયે, અપને કામ સે પ્યાર કરના ચાહિયે, અપને રિશ્તો સે ભી પ્યાર કરના ચાહિયે. ये हरगिज नहीं हो सकता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार के लिए आप सारी दुनिया के सामने लड़ जाए, ठीक है, पर उससे पहले आप अपने रिश्तों को प्यार से मनाने की, जो आपके साथ चल रहे थे, जो आपके साथ होने का आपको एहसास दे रहे थे, जिन्होंने आपको प्यार दिया या फिर प्यार क्या है वो सिखाया, उन्हें आप एक मौका तक नहीं देते. आप क्या उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल नहीं सकते? मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि आपके प्यार को वो लोग समझ पाए, 100% आपको सपोर्ट करें, पर इतना तो हो सकता है कि अब तक जब तक आप किसी प्यार में पागल होने की कगार तक नहीं पहुंचे, या फिर आपको नहीं लगा था कि मैं इनके सिवा जीना नहीं सीख पाऊंगा, तब तक अब जिनके भरोसे थे उन व्यक्तियों को, उन रिश्तों को, उनके साथ आपकी जो फीलिंग्स थी उन्हें आप साझा करते आए थे, क्या उनके पास एक मौका नहीं होना चाहिए कि वो आपके प्यार को समझने के लिए कोई थोड़ी सी भी कोशिश करें, और उस कोशिश के लिए आप उन्हें मौका दें, आप अपनी बात को रखें. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की जनरेशन में ये ज्यादा हो रहा है कि बस हमने तो एक बार कह दिया, उन्हें मान लेना चाहिए था. कभी आपने सोचा है कि आपको भी मनाने में घंटों लगे थे उन माँ बाप को, भाई बहन को, तो आपकी बात वो भी कैसे एक ही बार में मान जाए? आपको उसको मनाने के लिए बहुत सारे रीजन और ठोस वजह देनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे प्यार ही करते हैं. आइए कुछ ऐसी बातों को और भी आगे हम जानेंगे, मानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्यार केवल करना जरूरी नहीं, उसको महसूस करना भी जरूरी है. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर.

मैंने कहा ना कि अपने जीवन में भी रोमांटिज्म होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि किसी बंदे या बंदी से आप प्यार करते हैं तभी आप रोमांटिक हो, पर आप कोई काम करते हो, आप कुछ पहनते हो, आप जब

हम किसी इंसान के लिए प्यार जब इजहार करते हैं तो उसके लिए घंटों दिनों महीनों तक वेट करते हैं, पर किसी इंसान के साथ आपका कुछ बिगड़ जाता है और आप कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हुआ, यानी कि इजहार करने की जो प्रोसेस है उसमें डिस्टेंस आ जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि प्यार में ब्रेकअप यानी प्यार खत्म हो जाना ये वाली बात नहीं है, प्यार तो रहता है पर अब एक दूसरे को उस प्यार की कद्र नहीं है या फिर उसका एहसास नहीं है, या फिर एहसास है तो उस प्यार के साथ में रहना मुमकिन नहीं है। छोड़िए वो चीज़ें, पर ये बात है कि अगर उसे पाने के लिए वक्त दे रहे हैं, उसके लिए घंटों दिनों महीनों तक आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब वो चीज़ें आपके पास से निकल जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, तब आप लाइफ को क्यों वक्त नहीं देते? तब आप छोड़ देते हैं सारे काम, जॉब, माहौल, आसपास के जो रिश्ते हैं उनसे भी आप मुंह मोड़ लेते हैं। कभी तो बहुत सारे लोग आज की जेन ज़ी अपने जीवन को

वो समाप्त करने की ओर चली जाती है, समाप्त नहीं कर पाती तो मेंटल सिचुएशन में इतना खराब पोजीशन वो डाल देती है कि वहां से आगे जाना या फिर उसके बाद की जिंदगी या फिर उसके बाद उनकी लाइफ में जो व्यक्ति आता है उसके लिए वो सारी चीजें एकदम से तितर बितर बिखर जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? आपकी दोहरी नीति नहीं हो सकती। यही तो मुझे कहना है कि प्यार में भी अगर आप सच्चे हैं, आपने सच्चा प्यार किया है और आपकी वजह से किसी और का दिल टूटा है या फिर आपने किसी का दिल तोड़ा है या आपका दिल किसी ने तोड़ा है, सारी चीजों में वक्त, समय, टाइम, उस चीज को, उस एहसास को थोड़ा सा जीना चाहिए, तभी तो आप अपनी लाइफ में शॉर्ट टर्म डिसीजन लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उस वक्त भी आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि प्यार जिंदगी से नहीं गया, प्यार का मायना, प्यार का जो वो नाम था, प्यार का जो वो रिश्ता था, वो उस रिश्ते में थोड़ी सी खटाश, मनमुटाव या फिर कहते हैं कि दरार आ गई, शायद वो कभी भरेगी भी नहीं, पर वो दरार दीवार पर रहेगी जब तक वो दीवार है, यानी कि आप है। तो फिर क्यों आप प्यार को वक्त और मौका नहीं देते? सोचिएगा। और सही बात लगती है तो हर बार कहीं से भी दिल दुखे, कहीं से भी आपको अपने दिल से छेड़खानी होते हुए नजर आए तो वहां से आगे बढ़िए, समय और वक्त दीजिए। लाइफ है, उसे शॉर्ट करने की नहीं, उसे और प्यार से जीने की सोच लीजिए। फिर से मिलता हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

तो आज हम बात कर रहे हैं कि प्यार के अपने मायने, अपने किस्से और कहानी हो सकते हैं। बस किसी व्यक्ति से प्यार करना और उसके सामने अपने आप से, अपने जीवन से प्यार को हटा देना, ये सही नहीं है। चलिए एक छोटी सी बात हमारे लिसनर ने भेजी है, मानसी ने। मानसी और पारस आज मुकम्मल रिश्ते में नहीं है, जिन्हें आप आज की भाषा में कह सकते हैं कि ब्रेकअप, पर दोनों आज भी तकरीबन 10-15 साल के बाद भी मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी लाइफ की कुछ ऐसी मुश्किलियां जिन्हें लगता है कि एक दूसरे से सॉल्व हो सकती है उसके बारे में बात भी करते हैं। अब यहां पर ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है आपके ब्रेकअप के बाद आप मिले, पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर प्यार और फीलिंग्स आपके पास रहती है तो सिचुएशनल आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, परिस्थितियां साथ में ना रहने का बोल सकती है, वैसा कर सकती है, पर उसके बाद में कि आपके प्यार की इंतहा ये होनी चाहिए कि आप एक दूसरे का चेहरा भी ना देखें, या फिर एक दूसरे के लिए जब वक्त आता है मदद का तब आप मदद भी ना कर पाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब दिल किसी के लिए टूटता है तो बहुत सारी बददुआएं भी निकलती हैं, पर याद रखिएगा कि प्यार सच्चा है और दिल तोड़ने की कोशिश एक दूसरे ने नहीं की हो और सिचुएशन की वजह से आपका दिल टूटता है, आपके रिश्ते मुकम्मल नाम या रिश्ता नहीं बना पाते हैं।

लाइफ में, आपके जीवन में प्यार को संजोए रखना, यही एक बड़ी बात होनी चाहिए। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने वर्क से प्यार कीजिए, अपने रिश्तों से प्यार कीजिए, और अपने जीवन में आने वाले हर वो शख्स जिसको आप सम्मान दे सकते हैं, आदर कर सकते हैं, उसका कीजिए। यही रिश्ते, यही बातें आप अगर प्यार को मानते हैं तो कर पाएंगे, और कर पाए तो याद रखिएगा, लाइफ में आपका प्यार किसी न किसी मोड़ पर आकर आपसे ये कहेगा कि तुम्हारा प्यार इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ऊपर है। और हर एक बंदा या बंदी यही चाहता है कि मैंने जो जीवन में किया हो, पर मेरी खुशियां, मेरा प्यार, मेरे रिश्ते वो सच्चे हो, और उसका एहसास सामने वाले को एक ना एक दिन हो। यही तो दुनिया की रीत है और जिंदगानी की यही जीत है। इसी बात पे दोस्तों, चलो फिर मैं भी अलविदा कहूंगा, एक विराम के बाद वापिस आ रहा हूं। कैसे आप मेरे साथ बातें कर पाएंगे, अपने रिस्पॉन्स दे पाएंगे, उसके बारे में। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।